क्या ब्यूटीफुल नगमा है. और समय एक मैं आपको दूं, अभी सुभाष मोदी की जो का जो मैसेज था पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा. अब चलते हैं किसके पास, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हैं. सोनल मोदा, बाकिंग अप द रोंग ट्री मीन्स लुकिंग फॉर समथिंग इन द रोंग प्लेस. बिल्कुल. और ये भी हो सकता है कि आप रिश्वत दे रहे हैं गलत बंदे को, ये भी हो सकता है ना. इट मीन्स ब्लेमिंग द पर्सन.

0: person, wrong person for having a wrong idea. If you think I took your phone, you are barking up the wrong tree. इसका मतलब कि आप गलत बंदे पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये भी हो सकता है. Amina from Manchester. It means गलत आदमी पर इल्जाम लगाना, ये भी है, बिल्कुल. Amina from Manchester. Ritu Gupta.
1: प्रवीण जी नमस्कार. इसका मतलब होता है गलत आदमी पर, यानी कि किसी आदमी पर गलत दोष लगाना. जैसे हमारी कोई चीज चोरी होगी लेकिन उसने चोरी भी नहीं की, फिर भी हम उसको गलत कह रहे हैं, यानी कि गलत दिशा की ओर जाना. ऋतु गुप्ता.
0: बिल्कुल, गलत दिशा में जाना, ये भी है.
2: It's 12:21. Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs, or a segment of a program? There are a number of ways you can make a complaint or comment. You could send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.

0: आप आए बहार आई मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। अब मंजुला विश्वकर्मा
1: परवीन जी, इसे कहेंगे गलत दिशा में प्रयास करना या कोशिश करना, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गलत पते पर दस्तक देना।
0: क्या बात है, गलत पते पर, रॉन्ग एड्रेस पर जाके दस्तक दी है, खटखटाया है गलत दरवाजा। इसके कई मतलब आप देख सकते हैं। किसी गलत आदमी पर भरोसा कर लेना, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने गलत आदमी की हथेली गर्म कर दी है, रिश्वत गलत आदमी को दे दी है, इसको नहीं देनी चाहिए थी। ये है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब रसिला, ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपके हसीन रुख पे, क्या बहुत अच्छे। और आपने आंसर भी करेक्ट दिया था कि वो जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके सीईओ बने हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा साहब। बहुत शुक्रिया रसिला। और बिंदु, सबको नमस्कार। गलत फहमी होना, जी बिंदु, बॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री, किसी के बारे में गलत राय कायम की हुई हो आपने।
2: सलाम और आदाब शहजादी साहब और सबको। ये जब आप हेड ऑफ क्रिकेट बोर्ड के आप बना देते हैं मोहसिन नकवी को, ही इज नेवर प्लेड क्रिकेट, तो दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। यू नो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है इंडो पाक में, तो सब कॉन्टिनेंट में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन बच्चों को खिलाते हैं जो एक सर्कल में आ जाते हैं, बस उन्हें ही खिलाते हैं। यू नो एंड यू हैव गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, दे जस्ट फिनिश अ टूर इन वेस्ट इंडीज, दोज कंडीशंस आर डिफरेंट एंड द इंग्लिश कंडीशंस आर एब्सोल्युटली बहुत, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्ले इन इंग्लिश कंडीशंस। यू नो दीज बॉयज आर नॉट अकस्टम्ड टू इट, और द न्यू बॉयज, यू नो टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं, बट वो नो हाउ है ना, वो किसके बच्चे हैं, ये है वो है, कोई पर्ची वाला आ जाता है, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड द आर्मी इज एक्चुअली रूलिंग द एवरीथिंग। थैंक यू।
0: बिल्कुल शब्बीर अहमद, आपने ठीक कहा है कि जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, सर उन्होंने तो कभी मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट का गेंद भी उठाया होगा जिंदगी में। आप चेयरमैन हैं, आप का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी वैसे भी क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं, तो फिर अगर आप बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको फेवर की गई है, वहाँ सब जिन जो नाहल हैं वो वही बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, सभी जिनको नहीं होना चाहिए वही बैठे हैं। शबीर अहमद थैंक यू। और गलत दिशा में प्रयास करना, ये यासर ने कहा है कि ये यासर, मुझे नहीं लगता ये आपका नाम है असल, प्लीज़ अपना असल नाम लिखें। और आई एम मॉर्निंग एंजॉइंग द शो सो मच, थैंक यू, आई एम मेकिंग फूड एंड इज टर्निंग आउट सो गुड, बहुत सना। किसी को गलत सलाह देना, नहीं, नो नो नो, किसी को गलत दिशा, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी गलत आदमी पे भरोसा करना, ये है नॉट गलत सलाह देना। अच्छा, सलीम मेहर।
3: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। यू जस्ट मेंशन द नेम ऑफ सुभाष साहब, whom I've known since the early 60s. We were schooling together, we played cricket together. What a lovely story to hear his name and him today after so many years. If Subhash is listening, Subhash, please look after yourself and hopefully I'll see you at Lord's again next year. Take care, bye.
0: ये लो, क्रिकेटर्स एक दूसरे को मिल रहे हैं बेमिसाल अंदाज में, वाह क्या बात है सुभाष मोदी की। मुझे याद है सुभाष मोदी, आप बड़े मशहूर थे, मुझे ये नाम बिल्कुल फमिलियर लग रहा है, अखबारों में आता था आपका नाम। और सलीम मेहर थैंक यू। अब चलते हैं अजय पार।
4: हेलो सलाम आदाब नमस्कार परवीन जी। सबसे पहले मैं आज रेखा बहन जी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बस आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार बार दुनिया आए, बार बार दिल ये गाए, आप जी आए हर साल साल के दिन हो 50,000। परवीन जी भगवान जिंदगी में हर खुशी दे आपको, भगवान जिंदगी में हर खुशी दे आपको, आपको मुबारक हो जन्मदिन रेखा बहन, यही कहना था आपको। थैंक यू वेरी मच।
0: आपने देखा, आपने देखा नहीं अजय पाल कैसे बोल रहे थे, वो किसी की नकल उतार रहे। ओह माय गॉड, ये इनको तो ना जमीन क्या सोने का तमगा देने का वक्त आ गया है, असल सोने का तमगा अजय पाल ये किसी की तरह बोल रहे थे। अगर आपने नहीं गैस किया तो सो सॉरी। अमीर अली राणा, आपने कहा है बाकिंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मीन्स गलत आदमी से बात हो कर रहे हो। ओके, ये भी हो सकता है। के ने कहा है व्हेन द गलत आदमी वाज इलेक्टेड इन 2016 द अमेरिकन्स रैलीड टू नॉट माय प्रेसिडेंट कैंपेन। मुझे याद है उन्होंने कहा था नॉट माय प्रेसिडेंट, हमने नहीं इनको चुना, व्हाई डिड दे इलेक्ट हिम अगेन। के यही तो बात है हमारी इंसानों की, पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारी सोच चली जाती है।

0: शामिल अजय पाल को सुनकर किसी ने कहा देखो पॉपुलर डिमांड है कि अजय पाल का जो मैसेज है वो वापस सुनाया जाए, लेकिन समिन आपको देखना है कि वो कॉपी किसकी कर रहे हैं, मिमिक्री हो रही और मिमिक्री किसी लिसनर की ही है, मैं नहीं नाम बताऊंगी लेकिन आपने उनको सुना भी है। चलिए
1: हेलो सलाम आदाब नमस्कार परवीन जी, सबसे पहले मैं आज रेखा बहन जी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बस आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार बार दुनिया आए, बार बार दिलिए गाए, आप जी हजारों साल साल के दिन हो 50,000, परवीन जी भगवान जिंदगी में हर खुशी दे आपको, भगवान जिंदगी में हर खुशी दे आपको, आपको मुबारक हो जन्मदिन रेखा बहन, यही कहना था आपको। थैंक यू वेरी मच।
0: आपने जरूर सुना हुआ है इस लिसनर को, वो इसी तरह बोलती हैं जैसे आगे कागज लगा हुआ है और दौड़ लगी हुई है आपका जन्मदिन नहीं मैंने अगर मैंने कह दिया तो वो बुरा भी मनाएंगे, लेकिन यासर ने कहा प्लीज वापस प्ले करें। और सत श्री अकाल किसी ने कहा था और वो थी हैप्पी बर्थडे टू रेखा और परमिंदर चाना फ्रॉम किसुमो। ओके, परमिंदर चाना के बाद कौन आए हैं? रेखा वालिया के, आई डोंट नो, आई थिंक समबडी इज आस्किंग अबाउट रेखा वालिया, लेकिन खैर यहाँ पर चलते हैं। मेजर वांजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मुझे पता था कि ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने गए दिनों पूछा कि यास्मीन और मेजर वांजा आप लिखा करें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जैसे कि दर्शन सिंह लोटे और नसीमा अराइन ऑस्ट्रेलिया से सुनती हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, अशोक इटली से सुनते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हमें बताएं, सो थैंक यू मेजर एंड यास्मीन वांजा।

0: कैसे गाते थे ये दोनों रोमानी गीत, जैसे कि हीर रांझा हूं। उफ, अब देखते हैं कि एक लिसनर है, वो साउथ अफ्रीका में शमीम है, उन्होंने गेस कर लिया है कि अजय पाल किसकी नकल उतार कर ग्रीट कर रहे थे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच अमीर अली राना। इन द सॉन्ग बहारों से पूछो, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स। आई एग्री अमीर अली राना, इतना कमाल का बहारों से पूछो। लता महमंत है लगता है। और नमस्ते फ्रॉम बर्मिंघम, अच्छा बर्मिंघम में कौन है? टीना, ओ टीना कैसी हो? अच्छा चलो अब तो नहीं, आप सबको नमस्ते। तो समय टीना को अगला गीत हम कर देते हैं क्या डेडिकेट, और यहाँ बात करते हैं
1: सदाजी साहब, इट्स अ लेडी फ्रॉम किसुमू जो आई थिंक हर नेम इज सलमा,
0: सलमा अहमद। जी हाँ शबीर, वो सलमा अहमद है। आपको उनकी कंट्रीब्यूशन शायद बहुत पसंद आई है, अच्छी बात है, पर आपका मैसेज बीच में कट गया। अगला गाना टीना को फ्रॉम बर्मिंघम।
2: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स।

0: और वैसे तो देखा जाए तो एक मैसेज भी आया है जो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन उन्होंने शायद डिलीट कर दिया, लेकिन मंजुला विश्वकर्मा का आ गया है मैसेज।
1: प्रवीण जी, अभी आपने जो थोड़ी देर पहले बहुत पुराने पुराने गाने जो सुनाए ना, वो सब सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं पुराने समय में चली जाती हूँ। हम लोग छोटे छोटे थे और मेरे पिताजी बहुत शौकीन थे गाने के, दिन भर रेडियो बजता रहता था, कौन सा स्टेशन लगता था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब गाने बजते रहते थे और मुझे शुरू से ही क्योंकि पसंद है इसलिए मुझे ये सब याद है अच्छे से। और प्रवीण जी, सबको समझ में आ गया होगा कि अजय पॉल किसकी एक्टिंग कर रहे थे।
0: ओके, उसी तरह से ग्रीट किया है जैसे वो करती। मंजुला विश्वकर्मा, आपने सही कहा कि पुराने दौर में चले जाते हैं और खूबसूरत दौर था। इट्स गुड कि हम उस दुनिया में ट्रांस चले जाते हैं, एक ट्रांस में चले जाते हैं। टीना, आपने कहा है थैंक यू फॉर द डेडिकेशन, आई एम हियर टू वेलकम माय फोर्थ ग्रैंड चाइल्ड। टीना, आपका नाम ऐसा लगता है जैसे अभी आपकी शादी नहीं हुई लेकिन आपने कहा चौथा पोता या पोती। शी इज 5 days old और आप सुन रही हैं प्रोग्राम। टीना, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। और कहते हैं शब्बीर अहमद, द रफ़ी सॉन्ग वॉज आइसिंग ऑन द केक। शहजादी साहिबा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इंजॉय करते हैं ना।
2: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

0: वाह, बेस्ट ऑफ मुकेश। अब कौन आए हैं लाइन पर?
1: हेलो परवीन जी, अगर मैं कभी ऐसा कोई कोशिश करता हूँ किसी की आवाज कॉपी करने की, तो आप लोग प्लीज उसे गहराई से मत लें, सिर्फ उसे हंसी वजह के समझें और बस भूल जाएं फिर उसको। कोई इसमें सीरियस बात नहीं है, सिर्फ एक हंसी मजाक का ही एक प्रवीण जी पार्ट है।
0: तो हम भी हंसी मजाक कर रहे हैं, हम कौन सा सीरियसली आप पर इल्जाम तो नहीं लगा पर ब्रिलियंट सर, मैं चलती हूँ, दो गाने आपके लिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आगे नीलूफर के साथ रहें।